0: Move for 10 आ गया है This Girl Can का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।
2: Tune in to Inspire FM on 105.1 FM and globally at www.inspirefm.org.
3: I have with

0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: Faith is composed of 70 odd branches, of which the highest is belief in La ilaha illallah, and the lowest is the removal of a hindrance from the road. And the sense of modesty is an important branch of faith, reported by Bukhari and Muslim.
2: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
3: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
4: Ibn Umar radiallahu anhu narrates in a hadith anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marra ala rajul min al-ansar wa huwa ya'idu akhahu fil haya. The Messenger of Allah passed by a man of the Ansar who was admonishing his brother regarding shyness, blaming him, criticizing him, "You are too shy." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, "Leave him alone, for modesty or shyness is a part of Iman."
5: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
6: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फेंस रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
0: होशियार रहें, कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
8: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim और जनाब अशफाक हुसैन की आवाज में है। इस काम में जिन अफराद ने भी हिस्सा लिया है उनके लिए दुआए खैर की दरखास्त है।
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم।
8: पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से।
9: بسم الله الرحمن الرحيم।
8: अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है।
10: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد

ये मेरी सबसे फेवरेट तबीरात में से है, मुहावरों में से है कुरान के, अलम तर अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून, ये शुअरा के बारे में कहा है। वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, सो तो शुअरा के आखिर में, शुअरा का लफ्ज़ वही है जो अरबी में है जो उर्दू में है, लेकिन उसमें एक फ़र्क जान लें, शुअरा शायर, उर्दू में भी शायर कहते हैं ना, शायर आता है मशअर से, मशअर अरबी में लफ्ज़ है मशअर, और शईरा और शेर, शेर अरबी में असल में कहते हैं जज्बात को, अशआर और मशायर जज्बात का लफ्ज़ है अरबी में, और शायर को शायर इसलिए कहा जाता है कि वो अपने अल्फाज के ज़रिए क्या चीज़ एक्सप्रेस कर रहा होता है, जज्बात, और वो किस चीज़ को उजागर करने की कोशिश करता है अपने सुनने वालों में, उनके भी जज्बात, इसलिए उसको शायर कहा जाता है। असल में इसका, इस लफ्ज़ का ताल्लुक जज्बात से है। तो खैर, वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, जब अल्लाह ताला शुअरा के बारे में बात करता है तो उसको इस तरह नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ जो लोग शेर पढ़ते हैं उनके बारे में बात हो रही है, बात ऐसे लोगों के बारे में हो रही है जो किसी भी तरीके से लोगों के जज्बात को बरगलाते हैं, जिनमें यह सलाहियत होती है कि वो लोगों को जज्बाती बना दें, वो भी एक तरह के शुअरा होते हैं। तो शुअरा का लफ्ज़ी माना तो वाकई जो शेर पढ़ते हैं उनके बारे में, लेकिन इसका जो वाज़े जो उसका ज़्यादा वसी माना है, वो जो भी लोगों के जज्बात पर असर कर सकता है ना, उनका एक ग्रोह होता है, ऐसे लोग होते हैं जिनको, जो पहले ही गुमे हुए हैं ना, किसी राह की तलाश में है, वो उनके पीछे लग जाते हैं, जिसके पास पक्की हिदायत ना हो, पक्के गोल्स ना हो, पक्का उसकी ज़िंदगी में कोई हदफ ना हो, कोई नसबुल ऐन ना हो, तो फिर जो उसके जज्बात से खेल सकता है वो उसके पीछे लग जाता है। हो सकता है कोई रेडियो में किसी की पॉडकास्ट सुनता है, उसके गुस्से के जज्बात में उसको हाँ में हाँ मिलती है, वो उसकी बात सुनने लग जाता है, उसके पीछे वो उसका शायर है। कोई बहुत डिप्रेशन में है और वो गाने सुनता है, उस गाने में कैसे उसने मेरा दिल तोड़ा और क्या किया उसने साथ, और अब तो मेरे पास सिर्फ आंसू रहेगा, वो उसका, अब ये मैं ये तो उसने ऐसे लिखा जैसे मेरे लिए लिखा था, ओहो ही इज़ माई फेवरेट, यू नो, मेरे दिल की बात कह दी उसने। वो शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, जो लोग गुमे हुए होते हैं ना, जो रास्ते से हटे भटके हुए होते हैं, वो उनके पीछे लग जाते हैं। और फिर कहा शुअरा के बारे में, यानी जो लोग एंटरटेनर्स होते हैं, उस ज़माने के एंटरटेनर कौन थे, शायर, उनके यहाँ कॉन्सर्ट क्या होती थी, रात को सहरा में एक आग लगाई, बारबेक्यू की आग लगाई, सारे सर्कल बनाया उन्होंने, और एक जो है उसने शेर सुनाने शुरू किए, बाकी सारे अल्लाह, दैट्स इट, वो उनकी कॉन्सर्ट थी। अब आजकल तो ये बात बहुत आसान है समझने को, शायर का कामयाब होना और नाकाम होना उसका एक ही स्टैंडर्ड है, उसके पास एक ही मैट्रिक, पैसा नहीं, कौन कामयाब शायर और कौन नाकाम शायर, इसका फैसला कौन करेगा, आप बताओ, ऑडियंस, जिसकी ऑडियंस ज़्यादा है वो ज़्यादा कामयाब शायर है, जिसकी ऑडियंस कम है वो कम कामयाब शायर है, जिसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं यूट्यूब पर, उसका गाना उसका शेयर वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो ज़्यादा कामयाब है। तो शायर की करेंसी क्या है, शायर की दौलत क्या है, ऑडियंस, ऑडियंस, उसको सुनने वाले मिल जाएं, दाद देने वाले मिल जाएं, उसको पसंद करने, उसके काम को, उसके गाने को, उसकी नज़म को पसंद करने वाले मिल जाएं, वही उसकी गजा है। होता यह है लेकिन कि वो एक बड़ा ज़बरदस्त गाना रिलीज करता है और करोड़ों लोग उसको व्यू करते हैं, उनका फेवरेट गाना बन जाता है, लेकिन फिर क्या होता है उस गाने के साथ, यार ये बंद कर दो, बहुत लग गया, कुछ और लगाओ, तंग आ गए सुन सुन के, कान पक गए हैं, सुन सुन के सुन्नी हो गए हैं, बस करो ये। अब वो जो शायर है बेचारा, जिसने उस
उस कामयाबी का टेस्ट तो उसको मिला कि उसको मिलियंस और मिलियंस ऑफ व्यूज मिल गए, उसको बड़ी सक्सेस मिली, बहुत लोगों ने उसे पसंद किया, लेकिन वो बार बार जाके ना, उसके पास जितनी भी दौलत आ गई हो, वो YouTube पे जाके वीडियो के अंदर कमेंट्स पढ़ रहा होगा, और किसने पसंद किया, कितने पहले पसंद किया, और फिर उसको एक कमेंट मिला, आई एम टायर्ड ऑफ दिस सॉन्ग, इनफ ऑलरेडी, आई हेट दिस सॉन्ग, आई यूज्ड टू लव दिस सॉन्ग, नाउ आई हेट दिस सॉन्ग. अब उसके दिल में तकलीफ शुरू हो गई. गाड़ी उसके पास है, बंगला उसके पास है, हेलीकॉप्टर उसके पास है, दिल में तकलीफ है उसकी, यार ये क्या हो रहा है. अब उसको किस चीज की बेचैनी है, अब क्या करना पड़ेगा भाई, एक नया गाना रिलीज करना पड़ेगा यार, वरना तो मैं एक दो महीने में तो मैं रेलेवेंट हो जाऊंगा और मेरी गजा खत्म हो. उसकी तो गजा खाना पीना तो है नहीं, उसकी गजा है ऑडियंस. तो अब उसको चाहिए एक नया गाना, नई रिलीज. अब उसने नई रिलीज की तो लोगों ने कहा ये पहला वाला बेहतर था, ये तो थका हुआ है. अब वो और परेशान कि अब मैं क्या करूं, दूसरे वाले की सक्सेस पहले वाले की तरह नहीं है, वो अब जरा पॉपुलैरिटी मेरी कम हो रही है. तो अब उसके दिमाग में आता है मुझे कोई नया टॉपिक पकड़ना पड़ेगा, कोई ज्यादा स्कैंडलस चीज करनी पड़ेगी, कोई और अजीबोगरीब हरकत करनी पड़ेगी, उससे और ऑडियंस को मैं शॉक करूंगा इतना कि वो फिर देखेंगे मेरी वीडियो. यानी उसको अपने सर्कल से बाहर जाके कुछ और ही हरकत करनी पड़ती है ताकि लोग उसको व्यू करें, और जब वो देखता है कि लोग उसको व्यू कर रहे हैं तो अब उसको नई बात समझ में आती है, जितना मैं गिरी हुई हरकत करूंगा उतना ऑडियंस बढ़ेगी. तो ऑडियंस बढ़ाने के चक्कर में वो अगर शुरू में इंसान था, थोड़ी देर बाद वो बंदर बन जाता है. बात समझ रहे हो, ये जो एक प्रोसेस है. और मेरे ख्याल से अगर आप लोग कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फॉलो करते हो, आप हर एक के दिमाग में कोई और एंटरटेनमेंट होगा जो इस प्रोसेस से गुजर चुका है, और फिर जब ये प्रोसेस शुरू होता है, इसकी ताबीर क्या की है अल्लाह ताला ने, क्योंकि उन लोगों के बड़े फॉलोअर्स होते हैं. अगर दुनिया में सोचो किसके फॉलोअर्स होते हैं, दुनिया में फॉलोअर्स होते हैं या तो मजहबी लीडर्स के, किसी बुद्धिस्ट के बड़े फॉलोअर्स हैं, किसी दलाई लामा के बड़े फॉलोअर्स हैं, किसी पोप के बड़े फॉलोअर्स हैं, ऐसी बात है ना. मुसलमानों में भी किसी इमाम के, किसी स्पीकर के, मुसलमान मुल्कों में तो कभी कोई को ऐसे खतीब होते हैं कि वो खड़े होकर किसी जलसे में तकरीर करते हैं तो 2-3 मिलियन लोग ऑडियंस में होते हैं. तो मजहबी मैदान में फॉलोइंग होती है, और इस किस्म की इतने लार्ज नंबर्स की फॉलोइंग कुछ सियासी मैदान में होती है, और एक तीसरा मैदान है, वो कौन सा है, एंटरटेनमेंट का मैदान है, गाने शाने का मैदान है, कॉन्सर्ट्स का मैदान है, उसमें होती है, ठीक है ना. तो ये कुछ फील्ड्स हैं जिसमें लोग जमा हो जाते हैं बड़े नंबर्स के साथ और लोगों के पीछे आ जाते हैं, और इन तीनों का अगर आप अंदाजा करो, इन तीनों का ताल्लुक जज्बात से है. जो लोगों के जज्बात को सियासत में, जो लोगों के जज्बात को मजहब में, और जो लोगों के जज्बात को एंटरटेनमेंट में टच कर सकता है ना, उसकी ऑडियंस बड़ी हो जाती है. ऐसा ही होता है ना. और जज्बात का लफ्ज क्या है अरबी में, मशार, और उससे निकला है शायर, ठीक है ना. और उसको अगर अपनी ऑडियंस मेंटेन करनी है, उनके जज्बात को फर्दर करना है, तो उसको अब एक हर तरह से किसी ना किसी तरह मैं इस ऑडियंस को कैप्चर करता रहा हूं. उसके बारे में क्या मुहावरा कुरान ने इस्तेमाल किया, इस पूरी कहानी के बारे में क्या मुहावरा कुरान ने इस्तेमाल किया, कहते हैं अल्लाह ताला कहते हैं अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून, तुमने देखा नहीं कि ये हर वादी में भटकते फिरते हैं खाने की तलाश में.

गिरते वक्त आप नीचाई की तरफ जा रहे हो और नीचाई में गिरने का इम्कान ज्यादा होता है, और नीचे पहुंचते वक्त आपको नहीं पता आप कौन से खतरे में होगे, और हो सकता है कि ये वादी ही आपकी मौत हो, और उसमें और आपको पता भी नहीं कैसी वादी है, लेकिन आप उसमें उतर रहे हो, और एक दफा उतरे कुछ नहीं मिला तो एक और वादी में उतरने के लिए तैयार, फिर एक और वादी में उतरने के लिए तैयार। क्या ताबीर इस्तेमाल की है, प्यासा ऊंट जो किसी भी वादी में उतरने को तैयार हो किसी भी गजा की खातिर। और ये क्या है, वो एंटरटेनर, वो एक्टर, वो एक्ट्रेस जो कोई भी रोल करने को तैयार है ऑडियंस मिल जाए, कोई भी रोल, कोई भी किसी किस्म की भी म्यूजिक वीडियो बना लो ऑडियंस मिल जाए, मैं कुछ भी कर किसी भी वादी में मैं उतरने को तैयार हूं। और इस ताबीर से इंसान का एक मकाम पहले ऊंचा होता था, लेकिन लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो अपने आप को गिरा रहा है, वो नीचे गिरता चला जा रहा है। और अब हम क्योंकि एल्गोरिदम के ज़माने में हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इस ज़माने में है, एल्गोरिदम में क्या होता है, जो भी इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है, और जो इन्फ्लुएंसर बन जाए लोगों की फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, इज़न्ट इट, जो भी इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है वो देखता है कि इंगेजमेंट कम हो गई है, व्यूज़ कम हो गए हैं, मुझे और देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, फलाने के व्यूज़ ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, उसके व्यूज़ इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं कि वो इस चीज़ के बारे में बात करता है, मुझे भी इस चीज़ के बारे में बात करनी होगी, मुझे भी ये कुछ करना होगा। यानी अब आपका मकसद, लोग आपके पीछे आ रहे हैं क्योंकि आप उनके जज्बात से खेल रहे हो, और अब आप लोगों के पीछे भाग रहे हो, आप चेक करते हो उनके जज्बात किस तरफ जा रहे हैं, मैं भी उस तरफ जाऊं। يتبعهم الغاوون لم تر انهم في كل واد يهيمون سبحان الله। कितने 1500 साल पुरानी ताबीर, और आज आप सोचो आज क्या हो रहा है, कितनी 100% एक्यूरेट ताबीर अल्लाह ताला ने इतने कम अल्फाज में बयान की है इस मुहावरे के जरिए। आखिरी आज की इस सेशन की आखिरी ताबीर, ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط। खर्च के मामले में इतदाल करना चाहिए ना, यानी ज्यादा ना करो, फजूल खर्ची ना करो और कंजूसी ना करो। और इसकी इस बारे में सूरतुल फुरकान में भी बात की गई है, والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما। سوره الفرقان میں بھی یہ بات کہہ دی کہ وہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے اور بہت کھینچ کر بھی نہیں رکھتے۔ لیکن یہاں سوره الاسراء میں اللہ تعالی نے اس خرچ کے معاملے میں دو محاورے استعمال کیے، اب ان محاوروں کو سمجھتے ہیں، ان کا تعلق کس چیز سے، خرچ سے۔ ولا تجعل يدك اپنے ہاتھ کو مغلولتن اپنے الى عنقك اپنے ہاتھ کو زنجیر کے ساتھ اپنی گردن کے ساتھ نہ جوڑے رکھو۔ ایک ہوتی ہے ہتھکڑی جو دو ہاتھ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، آپ اس طرح سمجھو کہ ہتھکڑی کا ایک جو کڑی ہے اس کی آپ کی گردن میں ہے اور دوسری آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ایسے آپ کا ہاتھ یہاں پھنسا ہوا ہے۔ مغلولتن الى عنقك، آپ کا ہاتھ یہاں تک پھنسا ہوا ہے، یہ کیا عجیب سی۔ اور دوسری ہے، اور اس طرح نہ ہو جانا کہ دونوں ہاتھ کھلے ہو کے چل رہے ہو ایسے، تب سوتھا کل البسط، جتنے ہاتھ پھیلا سکتے ہو اتنے پھیلا لو، یہ تعبیر ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ آپ پیسہ آپ کا جیب میں ہے، آپ خرچ کرنے لگے ہو، دودھ خریدنے لگے ہو، بریڈ خریدنے لگے ہو، انڈے خریدنے لگے ہو، تو ایسے مت کرنا کہ عام خرچ کے لیے بھی ہاتھ ایسے گردن کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ جیب تک پہنچنے میں لگے کہ تم اپنے آپ کو پھانسی دے رہے ہو۔ لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، ایسے مت کر دینا کہ عام خرچوں کے لیے بھی تمہیں لگے کہ تمہیں کوئی موت دے رہا ہے۔ مجھے کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، یہاں پہ بھی ایسا ہوتا تھا، مجھے پتا نہیں تھا، مجھے ایک کپل ملا،

है, आपको मैनेजमेंट का आदमी बनाता है, आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आप पहले खुद को मैनेज करते हैं फिजिकली, इतनी मुश्किल वक्त में से आप गुजरते हैं, आपको पता चलता है आप नहीं मरेंगे, और फिर उसके बाद आप उसकी मैनिफेस्टेशन देखते हैं, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पावर्स दी जाती हैं, और फिर आपके लिए बहुत सारे बंदे हैं जिनका आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग से लेके उनकी लाइफ पूरी आप मैनेज कर रहे होते हैं। तो जब आप मैनेज करना सीख लेते हैं, ऑफिस को मैनेज करना, किसी आउटफिट को मैनेज करना, किसी बंदे की लाइफ को मैनेज करना, और ये सब आप खुद पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं खुद पर अप्लाई करना, लेकिन जब आप खुद पर अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप एक यूनिट के या किसी आउटफिट के फाइनेंसिस को हैंडल करते हैं, आप अपने भी हैंडल करना सीख लेते हैं। उसमें 400-500 टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट इलाकों से लोग आए होते हैं, किसी को प्यार से समझाना है, किसी को गुस्से से, किसी को डंडे से, किसी को सजा से, किसी को वर्बल वार्निंग से, किसी को बाकी चीज़ों से। उसके बाद ये सब तरीके भी आप सीखते हैं और अपने आप पे और अपनी फैमिली पे, अपने घर पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट, ये सब मैनेजमेंट्स हैं। जब आप ये सीख लेते हैं मैनेज करना, तो उसके बाद कोई भी चीज़ जब आप क्रिएट करने जाते हैं तो आपको पता होता है ये मैं चीज़ क्रिएट करने जा रहा हूँ या मैं काम करने जा रहा हूँ, इसमें फंड्स कहाँ से आएंगे, मैं सपोर्ट खुद को कैसे करूँगा, इस वक्त सिचुएशन क्या है मेरी। तो आप मैनेज करते रहते हैं लाइफ को साथ, हर वक्त आप मैनेज कर रहे होते हैं, यही काम है। सो जब आप मैनेज करना सीख लेते हैं तो फिर कब आप पोएम्स लिखते हैं, फिर किस प्लेटफॉर्म में आपने ये पोएम सुनानी है या किस चीज़ का इसको हिस्सा बनाना है, प्ले अगर आप करते हैं, अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है रेडियो का जिसमें सोशल मीडिया भी इन्वॉल्व है, डिजिटल मीडिया भी इन्वॉल्व है, शहर में आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, एक आपने एक चीज़ बना ली है, तो उसमें आप अगर लोगों को मूवीज़ दिखाना शुरू करें तो वो भी चल जाता है काम। अब आप आर्ट एग्जिबिशन करें कि जिस किस्म के हमारे पास लोग हैं वो भी चल जाता है, क्लोथ एग्जिबिशन करें वो भी चल जाता है, इसी तरह आप स्टेज प्ले लोग जाके ब्रॉडवे पे जाते हैं, इतने महंगे महंगे $500-500 के टिकट ले रहे होते हैं, $50 में भी आप ब्रॉडवे का एक टाइप का एक शो दिखा सकते हैं जिसमें से बहुत सारी चीज़ें हंसना खेलना और कोई मकसद की बात भी हो सकती है, तो आप स्टेज प्ले कर लेते हैं। इसी तरह आप फिर टाइम मिलता है आपको, आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो फिर एक्टिंग असल वाली देखें कि होती क्या है, जुमले पे जुमला बिठा देना या लाइन डिलीवर कर लेना एक्टिंग नहीं होती है, तो इसके लिए फिर मेथड एक्टिंग ट्रेनिंग के लिए एलए गया मैं, वहाँ से फिर मैंने कुछ सीखा, क्योंकि वो स्कूल ऑफ आर्ट एंड थिएटर है, तो उसमें फिर थिएटर कैसे बनता है, उसमें कैसे एक्टिंग होती है, थिएटर की एक्टिंग, फिल्म की एक्टिंग, वेब सीरीज़ की एक्टिंग, टीवी की एक्टिंग, ये डिफरेंट होती है, इसे बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे नुआंसेज होते हैं, तो आपको उनके साथ एडजस्ट करना होता है। ये करेंगे तो होगा, कोई बंदा भी एक्सपेक्ट नहीं करता, और कोई बंदा भी मुझसे या अपने आप से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं पहले दिन ही बहुत अच्छी नज़म लिख दूंगा, बहुत अच्छा प्ले लिख दूंगा या बहुत अच्छी एक्टिंग कर लूंगा, लेकिन अलॉन्ग द वे क्योंकि ये पर्सनैलिटी और चीज़ें बिल्डअप हो रही होती हैं आपके अंदर, वो कैरेक्टर लिखा किसने, मैं नहीं लिखा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, डायरेक्ट कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, एक्ट उसमें एक कौन कर रहा है वो भी मैं कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें ऐड अप करती हैं कॉन्फिडेंस से, और जो भी घबराहट और नर्वसनेस होती है उसको हैंडल करती हैं, और आप एक काम कर जाते हैं और डिसेंट सा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे तो पहले से दूसरे से बेहतर होता चला जाएगा। जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट एक्टर्स होते हैं जो एक ही काम करते हैं, वो यही काम 15 20 25 30 साल से कर रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स उनका काम ज़्यादा रिफाइंड होता है। अगर आप उनके साथ एक जगह हैंडल ही कर लें उस फ्रेम को, स्पेस को, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है, जैसे हमने हाला में किया, वहाँ पे सबसे जूनियर मैं था जो पहली दफ़ा कैमरा फेस कर रहा था, बाकी 15 20 सालों से ये काम कर रहे थे लोग, सो उनकी बहुत सारी फिल्म्स कर चुके थे वो, तो उनके साथ भी काम किया ठीक ही था, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि बहुत बेहतर किया जा सकता था उसमें, कुछ चीज़ों को वरी करने के बजाय अगर मैं और ज़्यादा अच्छी टेक्निक से करता तो और भी अच्छा हो जाता। तो इस तरह ये चीज़ें खुल कर आहिस्ता आहिस्ता करने और खेलने से ये चीज़ें पैदा होती हैं। कुछ लोग लकी होते हैं, शुरू में ही जिस काम के लिए वो पैदा होते हैं उनके हाथ लग जाते हैं, कुछ लोगों को लोग बता देते हैं आप इसमें बड़े अच्छे हैं, उसमें वो काम करते हैं और उसमें वो एक्सेल कर जाते हैं, कुछ लोग अलॉन्ग द वे सिचुएशन एक ऐसी बन जाती है जिसमें आप एक चीज़ का पता लग जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं। जैसे ये रेडियो का शो, मुझे तो कभी लगता भी नहीं था मैं शाय आदमी हूँ, नेचर बड़ी डिफरेंट किस्म की है, प्राइवेट भी बहुत हूँ, तो मैं ये काम कैसे करूँगा, लेकिन करते करते ये भी इतने सालों तक हो ही गया, अभी भी मैं रोज़ इस पर काम करता रहता हूँ बेहतर करने के लिए इसको। तो इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है, फिर फिनेस इंसान के अंदर होना, आप खाना बनाते हैं कैसे पेश करते हैं, सफाई सुथराई करते हैं कैसे करते हैं, लोगों के साथ चीज़ों का बैलेंस में, अगर आर्टिस्ट एक बंदा, बेसिकली आर्टिस्ट का काम पता है क्या है, आर्ट क्रिएट करने वाला एक ही है जिसने ये यूनिवर्स बनाई, जिसने ये दुनिया बनाई, वो आपको एक ब्रेन वेव देता है, आप उस ब्रेन वेव के अंडर, इन्फ्लुएंस के अंडर एक चीज़ बनाते हैं, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो कोई लिखने की चीज़ है, चाहे वो म्यूज़िक का कोई इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो कॉम्पोजिशन है, चाहे वो शायरी है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उस मोमेंट में आप उस चीज़ को पकड़ते हैं और
उसमें आपकी इतनी ज़्यादा से होती नहीं है, आप उसमें से खुद बाहर निकल जाएं और वो चीज़

0: जैसे है उसको वैसे पेश करने की कोशिश करें, और उसको नोक पलक संवारने में, जैसे यू नो एक स्कल्प्टर होता है ना, स्कल्प्टर जो होता है वो स्कल्प्चर बनाते हुए भी, वो किसी ने जब कहा था ना जो मुजस्मा होता है ना वो पहले से पत्थर के अंदर होता है। आर्टिस्ट का क्या काम होता है, वो सिर्फ उसकी जो साइड की फालतू की जो पत्थर है वो हटा देता है और उसके बीच में से वो निकल आता है। तो बिल्कुल इसी तरह आर्टिस्ट का भी एक्चुअल में ये काम होता है कि उसको एक चीज़ है, उसकी ब्रेन वायर्ड होता है एक सर्टन तरीके से, अब उसने उस ब्रेन वेव को पकड़ के उसको कैसे करना है। कुछ लोग बहुत लेज़ी होते हैं इसके साथ, कुछ लोग इसको बहुत एक गिफ्ट को गिफ्ट की तरह संभाल के रखते हैं आखिर तक, तो वो बहुत लंबे अरसे तक कोई चीज़ आपको दे सकते हैं। सो ये चीज़ होती है, कभी ये आपको हिट कर जाती है, कभी आप इसको हिट कर जाते हैं, और कभी एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें आप एक काम करते हैं और वो काम निखर जाता है और उसमें आपको मज़ा आने लग जाता है। उसमें रेसिप्रोसिटी जो है, लोगों को जो चीज़ उसके एक्नॉलेजमेंट मिलती है उससे आपको डोपामिन इफेक्ट मिलता है और फिर आप चीज़ों को क्रिएट करने लगते हैं। तो ये एक पूरा सफ़र हो सकता है किसी भी आर्टिस्ट का। कैसा था ये वाला आखिरी पॉइंट?
1: बहुत ज़बरदस्त था।
0: कोई पॉइंट मिस हुआ आज? ठीक है, ये नाइक्विल हल्की सी रात को लेके अगर ये आदमी कर सकता है तो इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है।
1: आपने नाइक्विल ली और ये हाल है
0: रात को रात को छींके शुरू होगी, तबीयत ऊपर नीचे होगी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी थोड़ी सी ले ले ताकि सो भी जाए, और सुबह का काम अब मैंने नहीं छोड़ना क्योंकि मैंने वादा किया मंडे वेंसडे। तो अगर मैं मंडे वेंसडे को भी नहीं कर सकता, मैंने फ्राइडे ऑफ भी लिया हुआ है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे चार दिन मैंने ऑफ लिए, तीन दिन मैं शो के बारे में और रेडियो के बाकी काम करता रहता हूँ, तो फिर मैंने कहा कम अज़ कम इतना तो कर, इतना करूंगा तो बाकी का काम भी होगा। और बाकी बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं, ये जो मैंने बाकी दिन ऑफ लिए उसमें कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन जो जो मैं कर पा रहा हूँ ना, स्क्रिप्ट के ऊपर कर रहा हूँ, प्लेस के ऊपर कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनाऊंगा, आपका दिल खुशी से गार्डन गार्डन हो जाएगा
1: इंशाल्लाह ताला। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
0: ठीक है, और आप इतने दिनों के बाद आए, उम्मीद करता हूँ, और आपने इतना साथ दिया, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लोगों के गोश गुजार किए आपने, ठीक है, उनके कानों में से गुजारे, इस तरह उनके कान साफ रहेंगे, और मेरा ख्याल है वो चीज़ नहीं होगी, वो एक दफ़ा उन्होंने जिसको हम जाने लगे आर्मी में तो उन्होंने कहा जी आपके कान साफ करने लगेंगे, फिर कानों में जैसे सैलाब आ जाता था पानी का, आपको ने कभी कराया वो?
1: हाँ जी, वो पहले तो उसी तरह पानी डाल के साफ
0: दे वो डैमेज इट, ये तो उसके पानी के अंदर केमिकल चीजें होती हैं, और इस तरह प्रेशर दे दे के कान का पर्दा फट सकता था, वो बेवकूफी थी करना, आजकल के जमाने में कोई सेंसिबल आदमी वो काम नहीं करता।
1: नहीं वो पहले जमाने में होता।
0: और एक और जाहिलों ने काम किया, मेरे दांतों में शायद कहीं कैविटी थी मोलर्स में, उन्होंने उसमें मर्करी डाल दिया। अब जितनी भी मैं नई साइंस पढ़ रहा हूँ वो सब के सब कह रहे हैं कि आपने वो मर्करी निकालना है, और जो मर्करी निकालना है वो मैंने जब डॉक्टर से पूछा तो मैंने कहा जी ये कैसे निकलेगा, तो उन्होंने कहा आप नई नई चीज़ें आ गई हैं जो बड़े हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक पीछे, क्योंकि उसके फ्यूम्स होते हैं, मर्करी तो मतलब कातिल चीज़ है, पता नहीं क्यों ये मर्करी डाल रहे थे उस ज़माने में, लोहे से किसी तरह से काम चला लेते या कुछ और कर लेते, तो अब जो है वो उसको मैं अब जब भी सोचता हूँ कि इसको निकलवाऊँ मर्करी को और उसकी जगह कोई नए ज़माने की अच्छी चीज़ डलवाऊँ, तो उसमें वो कहते हैं कि जी इसके फ्यूम्स के लिए फिर आपको पीछे एक ना एक सॉकेट सी गले में रखनी होती है ताकि वो फ्यूम्स पीछे की तरफ ना जाएं आगे। अब इस बात से मैंने कहा मराने के चक्कर में, ये पहले भी हमने इतने डरे हुए हैं कि दांत साफ कराते कराते बंदे की जान भी जा सकती है, वसीम अकरम की वाइफ याद है ना आपको?
1: हाँ जी,
0: वो डेंटल से ही उनको हुआ था।
1: नहीं ये सब अजीब की चीज है कि कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त।
0: गए आप दांत साफ कराने, लेके आप ब्रेन का इन्फेक्शन आ गए।
1: तो
0: लोग कहेंगे पता है लोग क्या कहेंगे, हमें तो पहले से पता था एक नॉर्मल ब्रेन का आदमी ये काम तो नहीं कर सकता जो बोल के लबाजा। तो मैं जाते हुए लोग अपनी आंखें कान नाक दे रहे हैं, मेरे किसी काम के तो है नहीं, मैं ब्रेन दे जाऊंगा कि इसको खोलो चेक करो कहाँ पे चोट लगी थी बचपन में, ये जो मैं दरिया में गिरा था घोड़े से और पुल के नीचे से आया था तो वहां तो सट नहीं लगी मेरे सर में ये।
1: अल्लाह ज़्यादा वो एक अलग वाक्य जो आपने सुनाया था, जो आप गिर गए थे,
0: आई वाज जस्ट 1 year old, हाँ जी 1 साल का था मैं,
1: अल्लाह
0: घोड़ी पे मैं शेर खान के साथ जा रहा
1: था। अजीब चीजें हुई हैं
0: पता नहीं, और जो भी हुआ उसके बाद मैं बहुत बीमार हो गया था, मेरी माँ कहती है, तो उसके बाद ना कोई चीज मेरी फिर एलर्जीज नॉर्मल नहीं रही, मुझे हर चीज फिर उसके बाद ही शुरू हुई थी, बट बच गए उस पानी में, सवाल ही नहीं पैदा होता था एक तरफ, दूसरी तरफ वो पत्थरों का पुल था, उसके नीचे कितने बड़े बड़े पत्थर हो सकते थे बच्चे का जो सर, और जो भी मुझे चोट लगी है उसके बाद से शो निकला है। शुक्र है मैं
1: शुक्र
0: है कुछ चोटें जैसे कहते हैं ना कुछ दाग अच्छे होते हैं, इसी तरह कुछ चोटें भी अच्छी होती हैं लगता है। अगर प्यार से मारी जाए और रब की तरफ से ना, वो एक लात जो कुब्बे को रास आ गई और उसका हंच जो था ना, वो हंच बैक जो था ना, वो सीधा हो गया।
1: अज़ाला, यू आर सच अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: और बेसिकली ब्लेसिंग्स आप लोग हैं, और आपने अभी जो इतना अच्छा वक्त हमारे साथ गुजारा, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज एक स्ट्रेसफुल डे को डी स्ट्रेस करने में अपना तीन मेहरबान लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। आज कॉल्स वैसे कम थी, लेकिन मेरा ख्याल है लोग जब आप और हम बात कर रहे होते हैं, और शहनाज जी और हीरा सिंह जी तो फेवरेट लोग हैं लोगों के, तो इनकी डिस्कशन से जो शगुफे फूटते हैं, जो क्लिप्स बनते हैं, और जो शो जिस किस्म का बनता है, लोगों को बड़ा पसंद आता है। पिछले तीनों शोज़ जो हैं ये अभी तक बहुत अच्छे रहे, मैं ग्रेटफुल हूँ। और आपको रब जो है वो सेहत और भी अच्छी और बेहतर अता करे, ताकि आप सारे स्वेटर के बटन खुद बंद कर सकें, ठीक है जी, और खुश रह सकें। इसी तरह खनखनाती हुई हंसी, जब आप नहीं थी तो हमने आपका यू आर लिसनिंग टू रेडियो आज़ाद, हेलो हेलो माई डार्लिंग्स, वो सब जो था वो हमने लोगों के गोश गुजार किया और रूहानी तौर पे आपको प्रेजेंट रखा, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स जो है ना वो हमारे साथ शो में रह सके।
1: सलामत शहजाद,
0: खुश रहें, ग्रेटफुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, इजाज़त चाहते हैं आपसे, वक्त हुआ चाहता है जी कमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपके लिए खबरनामा, खबरनामे के बाद आपका शो, और आज का जो पोम और आपका ट्रैक जो है हम पे उधार रहा अगले शो में। अगला शो इससे बहुत बेहतर होने वाला है। उस शो से पहले हमने कुछ, अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में बहुत इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट के बारे में हमने आपसे कुछ बातें करनी है, वो भी हम दिसने शो में आपसे करेंगे। कुछ नए टॉपिक्स हमने आपको देने अगले शो के, और बहुत मज़ेदार टॉपिक्स जो पहले कभी किसी रेडियो पर नहीं हुए होंगे, कभी बोल के लब आज़ाद है तेरे मेन्यू, ऐसे एक दो टॉपिक हैं जिससे जो रिलेटेड है हमारी ऑडियंस से, वो करेंगे हम आपके साथ, कुछ फन क्रिएट करेंगे इन दिनों में, फिर आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक्स, और फिर हमने शो से क्या सीखा, और उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे अपने सीजन 18। ये सीजन 17 आज तक का सबसे लंबा सीजन था, और ये तमाम आप लोगों की मेहरबानियों से हम यहाँ तक पहुँचे। जो भी टूटा फूटा हमने काम किया और आप लोगों ने उसको सलाम किया, उसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको वो बात तो याद होगी जिसकी वजह से ये शो बना, फैला, फला फूला और यहाँ तक पहुँचा। ये करेंगे, सब कुछ हो सकता है, अगर ये वो की है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। और ये याद रखिएगा, ये जो चीज़ हमने एक आपके लिए बनाई है। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
2: Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Did you know? Sound travels about 4 times faster in water than it does in air.
4: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
5: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
6: What if we all smiled to a total stranger instead of walking past them if they were danger? even smiled at those who hate us. Perhaps their hearts would soften and they would embrace us. Smiled when it rained, showing gratitude to Almighty, what He has created. Smile at our brothers and sisters, so that it creates love and removes suspicions. Smile even at our neighbors, something our Prophet faces with eagerness. Smile on trivial materials, escaping from jealousy and hatred. Smile at those who are in distress. Pray to Allah to give them happiness and success. Smile to please the most kind, the most merciful. Allah will love us indeed. Allah will love us.
7: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
8: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
9: حق کی آواز کبھی دبتی نہیں, کبھی جھکتی نہیں, کبھی مٹتی نہیں. اعتدال, حریت فکر اور سچائی کا پرچم. آئیے سنیے وہ آواز جو دلیل سے لبریز, قرآن و سنت کی روشنی سے منور اور حق کی گواہی دیتی ہے. میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد, آپ کے سامنے پیش کروں گا پروگرام آوازہ حق میں, حق کی آواز. ایک ایسا پیغام جو دلوں کو بیدار کرے, ذہنوں کو روشن کرے. ہر سوموار 11 بجے اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
11: Assalamu alaikum.
12: We are now going to play the elegant recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Farsi, Imam, Quranic reciter and nasheed artist from Kuwait, with English translation.

0: इतने दम तक आपके साथ, बेशक आप कहें कि जी मैं तो अभी लड़ाई हो गई है, अब तो हमारा जो है कोई अगले कुछ अरसे तक हम तो आपस में बात भी नहीं करेंगे, लेकिन द रियलिटी इज दैट यू कांट से दैट यू डोंट हैव एनी सिबलिंग्स. ठीक है,
1: देखिए ये कहना कि हमारी जान छूट जाती है बहन भाई से, ये जीना मरना खत्म हो जाता है, ये गलत है.
0: बिल्कुल
1: वही बहन भाई, अगर खुदा ना खास्ता उनमें से कोई एक भी चला जाता है, फिर सारी जिंदगी का पछतावा रह जाता है. ठीक है ना, तो मेरा, मैं तो यही कहूंगी कि देखें, सबसे पहले आपको अपनी अना खत्म करनी पड़ती है. रिश्तों में अगर अना हो, ईगो हो, तब फिर रिश्ते आपके नहीं चल सकते हैं. तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं बड़ी हूँ, वो पहले मुझे फ़ोन करे, ठीक है, तो उसके बाद मैं बात करूँगी, तो ये तो गलत है. अगर आप बड़े हैं, अगर आप खुद को बड़ा समझते हैं, तो कभी कभी बड़ों को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, आगे होना चाहिए, ताकि वो बाकी सारे बहन भाइयों को इकट्ठा कर सकें.
0: एग्जैक्टली इस चीज़ को सोचे बगैर कि हु शुड मेक द फर्स्ट मूव, यू शुड मेक द फर्स्ट मूव, योर सेल्फ मेक द फर्स्ट मूव टू सेव द रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स. और उसके बाद जैसे हमने कहा कि you can't say कि you are breaking your relationship with your siblings forever. It can't happen because they are your lifetime relationships. We are soon going to go into our azan break because it's Maghrib. The time for Maghrib, and we are going to see you after a short azan break.
2: In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salatul Maghrib.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Welcome back after the Azan break. Afsha, we are almost towards the end of the our live program today. 0777948182. You can still call us and leave us with your feedback. You're listening to Inspire FM 105.1. We were talking about why adult siblings drift away from each other. How do they... What makes their bond weaker or when their relationship breaks? Humne kafi sari reasons ko discuss kiya. Building broken sibling bonds. Kya karna chahiye? Something practical that they our listeners should take away from today's discussion.
2: Wo abhi humne isi pe baat kar rahe the ki agar aap ghar mein sabse bade hain, theek hai, to isme phir responsibility aap par aati hai. कि आपको सब बहन भाइयों को थोड़ा सा इकट्ठा करना पड़ता है. देखिए, ईगो जो होती है ना, वो उस वक्त तक अच्छी लगती है जब तक आप लोग मिलजुल के रहें. और उसमें ईगो नहीं होनी चाहिए, उसमें प्यार मोहब्बत होना चाहिए. आप बड़े हैं, सब आपका रिस्पेक्ट करना उनका फ़र्ज़ है और

यानी हशर के दिन उसके सामने ला खड़े किए जाओगे। किस लिए, क्यों? हिसाब किताब के लिए, जजा सजा के लिए उसके पास लाए जाओगे। दो दफ़ा ज़िंदगी, दो दफ़ा मौत। पहली ज़िंदगी ये है, फिर मरना, फिर ज़िंदगी, और इससे पहले की मौत थी। यानी आगाज़ मौत से है, फिर ज़िंदगी, फिर मौत, फिर ज़िंदगी, और ज़िंदगी ही ज़िंदगी। कब्र की ज़िंदगी बरज़ख़ की ज़िंदगी है। फिर उठाए जाएंगे, फिर मरेंगे नहीं, फिर दोबारा कोई मौत नहीं, क्योंकि मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और ज़बह कर दिया जाएगा, और जन्नत वाले हमेशा जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में। दैट्स एंड, दैट इज़ द एंड ऑफ स्टोरी। तो यहाँ पर अल्लाह के वजूद के इकरार के लिए ऐसा सवाल किया गया कि जिसके बारे में इंसान लाजवाब हो जाता है। पहले तौहीद को साबित किया गया था तख्लीक से, और यहाँ हयात और मौत दोनों से, क्योंकि ये काम अल्लाह के बग़ैर कोई कर सकता ही नहीं। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को क्या कहा था, मेरा रब कौन है? वो जो ज़िंदगी देता है और जो मौत देता है। तो नमरूद ने कहा मैं भी ज़िंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। बहरहाल यहाँ क्या है कि कोई भी शख्स अल्लाह के वजूद का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह दे सकता है। कितनी हैरत अंगेज़ बात है ना, कि आप में से जो माएँ हैं उन्होंने ये तजुर्बा किया होगा कि पेट के अंदर अचानक एक हरकत होती है, उससे क्या पता चलता है कि रूह आ गई है। वो कब होता है पता चलता है आपको? कब पड़ी जान? माँ को खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया। किसी इंसान ने नहीं किया, माँ ने खुद नहीं किया। और बाजू का तो क्या था, सोते सोते आँख खुल जाती है कि जैसे कुछ अंदर हरकत कर रहा है। वो हरकत ज़िंदगी की अलामत है, लाइफ है, ये सिर्फ अल्लाह करता है। और अगर आप देखिए कि बाज़ औक़ात रूह नहीं पड़ती तो वो बच्चा बाहर आ जाता है, जनीन अबॉर्ट हो जाता है जब उसके अंदर लाइफ नहीं होती। इसीलिए जब रूह नहीं पड़ती और वो बच्चा जिसका लोथड़ा वगैरह तो बना होता है, रूह नहीं अभी अंदर आई होती, वो बाहर आ जाता है, तो उस पर ना जनाजा होता है, ना गुसल होता है, ना कफन होता है, ना दफन। उसको जहाँ मर्जी आप डाल दें। हाँ, एक दफ़ा अगर रूह आ गई और फिर वो मरा अंदर या बाहर, तो फिर मामला फ़र्क है। लेकिन यहाँ क्या हुक्म है, जिस चीज़ पर यहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत है वो क्या है, कि अल्लाह वो है जो ज़िंदगी बख्शता है, जो मौत देता है, और मौत के बाद फिर वो ज़िंदगी दे सकता है। क़यामत के दिन भी वही उठाएगा। काफिरीन मक्का कहते थे मैं यहील निज़ाम वही रमीम, कौन इन हड्डियों को ज़िंदा करेगा जब ये पुरानी हो जाएंगी। कुल यही हल्लवी अनशा अव्वल मर्रा, कह दीजिए इनको ज़िंदा करेगा वही जिसने पहली दफ़ा ज़िंदगी दी थी। वह बिकुल खल्क़िन अलीम, वो तख्लीक का हर काम जानता है। तो इस आयत से जो अहम तरीन बात हमें पता चलती है वो ये कि अल्लाह का इनकार करना दुरुस्त नहीं, और अल्लाह के वजूद पर दलील क्या है, इंसान की अपनी ज़िंदगी और मौत का निज़ाम। और दूसरी बात ये जो आयत के आखिरी हिस्से से पता चलती है कि इंसान जहाँ से आया है वहीं वापस जाना है। अल्लाह की तरफ से आए हैं, उसी के पास वापस जाना है। लिहाजा इस ज़िंदगी में भी हमें अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक काम करने चाहिए। क्या हम अपनी मर्ज़ी से आए, क्या अपनी मर्ज़ी से जाएंगे? जब वो लाया आ गए, जब वो ले जाएगा चले जाएंगे। न आने में मर्ज़ी, न जाने में मर्ज़ी। तो इस ज़िंदगी में भी मर्ज़ी नहीं करनी चाहिए। किसकी मर्ज़ी होनी चाहिए? अल्लाह की, जिसने ज़िंदगी दी, ताकि क़यामत के दिन वो हमसे पूछे कि बताओ अब तुम्हारी मर्ज़ी क्या है। लेकिन अगर हम इस ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी करते रहे तो वहाँ फिर हमारी मर्ज़ी नहीं पूछी जाएगी। और आखिरी आयत हुवल्लज़ी, वो अल्लाह वो ज़ात है, खलक़ लकुम, जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए बनाया क्या, मा फिल अर्दी, जो भी ज़मीन में है, जमीअन, सारे का सारा, सब कुछ। ज़रा गिने तो सही कि ज़मीन में क्या कुछ है, ख़ा वो नबातात हैं या हैवानात हैं या खाने की चीज़ें हैं। सूरह फुस्सिलत में आता है वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा, सारी रोज़ी बंदों की इसके अंदर रख दी अल्लाह ने, हमारे लिए बनाया। सुम्मा इस्तवा इला समाए, फिर आसमान की तरह मुतवज्जे हुआ, फसव्वाहुन्ना सब्अ समावात, और उनको सात आसमान दुरुस्त तौर पर बना दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि ज़मीन आसमान से पहले बनी है, और पहले की बात इसलिए भी की गई कि इंसान को कदर हो अल्लाह की नेमतों की।
اللہ کے احسانات کا شکر گزار ہو۔

0: इंस्पायर एफएम की वेबसाइट पर मिलेगी आपको बेशुमार मालूमात, लुटन में होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम, लुटन कम्युनिटी की खबरें और बहुत कुछ। विजिट कीजिए www.inspirefm.org।
1: سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا